तकलीफ क्यों है? क्योंकि असीं गुरु का हुक्म नहीं मानते, गुरु का बचन नहीं मानते। बिन गुर बचन जो मनना ऊरा परथाओ, कहते तुझ जी एक वसीला है। जे मनुख तू कर सके ते जेना मनुख कर लवे ओदे हुक्म रजा विच आ जाए, फिर कहते ने ओदी पूजा परवान हो जाती है।

हर की पूजा दुर्लभ है संतो। हे संत जनो, हरी दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावे जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है, पर कहिंदे ने इह दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर दे खान,

ख्याल बड़ा सुंदर है, हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्योंकि हरि वाहिगुरु दे नाम तो बिना सब कुछ मैला है। ए तन मैला, ए मन मैला, ए तन मैला, ए संसार मैला, इस संसार दा विहार मैला। आ तुसी देखो हर पासे मैल है, इसलिए सानू सतगुरु जी उपदेश देंदे कहंदे ने हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्या हो पूज चढ़ाई तो किवें पूजा करेगा, की पूजा ली चढ़ावेगा, क्योंकि सब कुछ तो मैल है, सब कुछ मैल है, सुचा की है, क्योंकि असी वो चीज परमात्मा की दरगाह विच अर्पण करनी है जो सुचा होवे। इसलिए सब तो पहले आपा तन सुचा करने, फिर मन सुचा करने, फिर तन सुचा कीता जांदा है, फिर गुरु दे अर्पण हुंदा है। इसलिए आपां उद्यम की करने हैं, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, क्योंकि गुरु दी पूजा विच बैठना है, गुरु दा सिमरन करना है, अपने आप नू अरोग बना ले, पहले अपने आप नू सुचा कर ले, जिस तक सुचा नहीं तू हुंदा ते गुरु दी अर्पण की करेगा। हर बिन सब किच मैला है संतो, हर बिन सब

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा दे फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जो मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करन दी एक मर्यादा है, एक नियम है, एक ला एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा वह पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहिंदा नहीं मैनूं लोग देखण के मैं पूजा कर रहा हां। कई लोग पगतावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है प्रगटावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तू पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन कर्म वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

सच्चे पातशाह। प्यारे गुरुदेव सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज, इस शब्द दे विच ये दसते हैं कि आप जी की आत्मक अवस्था इस तरह की है कि हों जीवा नाम ते आए। जदों तक मेरे ध्यान दे विच वाहिगुरु तेरा नाम तेरी याद रहिंदी है, उदों तक मैं अपने आप नूं अलाइव महसूस करदा हां, जिंदा महसूस करदा हां।

तू मेरे प्यारो तो कैसी भूखा है, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरियां दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। ए मेरे प्रीतम, प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक एक्सप्रेशन है। ए मेरे प्रीतम, तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा। कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। साध संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हां जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। इथों दो नुक्ते सिद्ध होंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी का अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है तो गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसी ना किसी एक्सपीरियंस के बेस उते होंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलाणगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसनू मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनू जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरे नू उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकदा है। हुण असी महाराज जी तों आओ गुरबाणी चों पुछिए, सच्चे पातशाह साडी समस्या यह है।

संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हन, प्रेम रूप हुंदे हन। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साधी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारिया दे नाल ही बना दी है, मैं सारिया नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनों सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संत संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहा

any number. And Sattva Sarangani Mata. जिसने ए मंग मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी वो कड़ी मंग नानक को ब्रह मया कर सच देवो क्योंकि सच सदा रहने वाली कूड़ की खुटके नानका कूड़ में हो गया पूरे पदार्थ में भी नहीं रही तो इस वास्ते नाम पूर्ण निकुटे नाम का औरंग सच और सिर्फ भी यह था पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान दुनिया सबका हाँ जी रस्ते चंगे रस्ते थे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले भजन फरमाने सच्चे मार्ग चल देना उस तुझ करे सच जरा सच पिया बोल रहे और दुध पिया जरा झूठ पिया बोलता है और जहर पिया सच बोलन जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोल जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई वो नाम केड़ा है वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हम उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू के अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा लगा फिर वो राखी करनी पैदी संभाल करनी पैर सामू जरा अम फल है वो प्राप्त इसे उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरुमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाह ही टिकट दरगाह दुनिया भी सफर करना होने ता भी टिकट की जरूरत टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसी तरह उस दरगाह जाने वास्ते मार्ग तक पहुंचने वास्ते सानू टिकट चाहिए एक दिन वस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धिया त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा मारे ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह पहले दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुर रहे हैं महाराज तो कितने मील उसके कौ कितने प्रयाग सब बांबे जाना मीलों का पता
ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का

त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐन सुपागो। सुख दुख दोनों सम कर जाने और माने पुमाना। हर क सोग ते रह अतीता तिन जग तत् पिछाना। उस्त निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाना। जन नानक के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। जन नानक के खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनस पागो। पहला मरन कबूल जीवन की छड़ आस। होए सबना की रैन का ता आओ हमारे पास।

साहब फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा,

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावा बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहंदे ने

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समो को बहुत दयारे, ये मेरे मालिका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, मेरे मालका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चात्रक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है, जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरा मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। ये सेवा मिल गई है तो कर ही तदे का मार्ग मक्ष गंगाराम रात दिन भांडे मांझी जाने ते गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए कदों भागा वाला दिन चले ये धन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर जिस तरह बख्शिश हो रही गंगाराम की सेवा थाए बहुत करा सामान क्योंकि कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं आप खुश दुख की एक घड़ी आ जाए कि नहीं आ जाए पता ही नहीं लगे किस तरह समा यही है मालिक धन गुरु अमरदास पातशाह आप सारी मार्ग ने मेहनत की तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का की करो ते इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए गंगाराम दे सदके सानू ही दीदार का किड़का मिल जाए फिर साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु कार किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी तन तन मन तन ना जिसने भी सेवा की थी है अदूर फरमाते जान के सिमरन सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कामना कर अपनी कामना भी गंगाराम की कामना किस तरह गुरु ने सकते अमृत साढ़े पाई साढ़े जीवन का कीर्तन आशा जी अमृत वेला सच ना बड़े आई जिदा नाम ही अमृत वेला है उसकी स्तुति कर समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो गुरु नानक पातशाह खां के सामने पूर्णमासी गुरु ने माण बख पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश रही कई बाबा ने सिंह जी उथे 24 घंटे का सत्संग है नानक डेली कोई आए चाहेगा पर पूर्णमासी का समागम खास होता है दास इंडिया विच होवे बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरदा ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी तुहाडे कोल आई तुसी तां जी जुड़े हुए हो तुहाडे दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावांगा सुरत नानक साहब पहुंचा के दर्शन कर पूर्णमासी आप आओ गंगाराम जी साखी सुन के अपना जीवन सेवा करो आप जिस गुरु ने सानू ते दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए यही अरदास करिए पले अमरदास बनते तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह की तासे कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां ते आपां माया कई रूप धार के पिछड़ी पिछे आए पर जे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नूं पा गए आखो सही गुरु नूं पा गया जीवन सारा का सारे मिल के करी उस तो प्राप्ति करी धन गुरु नानक पातशाह आप जी ने करम करम सारे गुरसिख माई पाई धन गुरु अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरपुरब मना
ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ

शुक्ला शंकर राशि ए भी कर कर रहा बड़ी आड़ जा फिर फिर जल में अर्शो संग न गया। राजलीला राजन की रचना करया हुक्म अपारा सृज सौणी चंदन चोरा नाथ कौर का द्वारा। हर तीर्थ साध संगत है सिर कर्मन के कर्मा कौनान किस पयो पराप जिस पूर्व लिखे का लहना। सेवक यह रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता। तेरो सेवक

उस वह करके अर्थात समुद्र की मत कहो। काट बनास्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण न बिनती काल कृपाण न बिनती ना तो तुमको सब नय कर हो। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट पराद हमारे हो। अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी। तुम आपन बिरत रखाओ तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेल।

रखना खाली ना रहे। आओ सारे मालिक दे दर ते हाजी अलग बाबा जी वचन कर दे सन जरा गुरु नानक दे दर खाली चला जाएगा और सारा खाली रहेगा। आओ चोरी करो ते सारे हाजी अलग कीर्तन हो रहे कीर्तन दे प्यार वाले कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे टेपा लगी कुछ बुद्धि अनुसार जो सेवक बोली जाता है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो छोटी टेप है गुरु नानक पातशाह के दरबार इतनी वही सारी टेप लगी हुई है जो भी गुरु कुमारी भाई इतने आता है जिस पहुना आता है वो रिकॉर्ड होया जाता है। बदले बच्चा

जिस तरह के भगत कबीर साहब बयान करते हैं, राम भगत अणियाले तीर, ये प्रेमा भगती दे अणियाले तीर ने। इन्हां तीरां दा दर्द या प्रभु जानदा है, या फिर वो जिहड़े प्रभु नाल

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जी दी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुलां नाल बड़ा प्यार करदे ने, ता प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरी दा फुल पत्तियां निकल आईया। ता इस बच्ची ने कपड़े दी एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नू खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लेके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणां नू मत्था टेक के ए फुल भेंट करना। इस बच्ची दे मन दी ए भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया, आनंदपुर साहब जाण नू भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों अपनी माता दे नालों पहला ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वाल देखिया, सोहना फुल खिड़दे है, उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणां सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठिया। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणां फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उसे तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वल देखिया, मन गुरु दे चरणां विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके फुल दे कोल बैठी और बेनती करती है, ऐ कलगीधर पिता कृपा करनी, ए जड़ा फुल

हाथ जोड़ के बैठी रही। फिर उठी, बाल्टी लेके रोज की तरह पानी लेने चली गई। दूसरे पासे बाग दा मालक जसवंत राय बाग दी सैर करन आया। फुल तां होर भी बड़े सन, पर जद इहदी निगाह इस चकोदरे वल गई, अपने नौकर नूं कहण लगा, कामिया फुल ते होर भी बड़े ने, पर इहो जिहा फुल सारे बाग विच नहीं, जा ए चकोदरा तोड़ के लिया। ओ कामा अपने मालक दा हुक्म मन के फुल तोड़न वास्ते तुरिया। ओ बच्ची जड़ी दूर पानी पई भरदी सी बाल्टी विच, उसने नौकर नूं फुल वल जांदा देखिया ते समझ गई ए नौकर फुल तोड़न चले। इधर नौकर ने फुल नूं हाथ पाया फुल तोड़न वास्ते, उधर उस बच्ची ने ऊंची सारी एक तरला लिया, ऊंची सारी आखिया, हाए ना तोड़ वीर वे, ऐ वीरा फुल ना तोड़ी। इस बच्ची दी आवाज विच इन्ना दर्द सी, तरला सी, कांबे दा हिरदा कंब गया। उदा हाथ पिछा आया, पर जसवंत राय वह गुस्से विच कहण लगा, कामिया कोई फुल क्यों नहीं तोड़दा, तैनू क्या फुल तोड़। कामे ने फिर हाथ वधाया फुल तोड़न वास्ते। हुण उस बच्ची ने बाल्टी उत्थी सुट दिती, ज्यों उत्थों भजी कहिंदे आ रही है, हाए ना तोड़, हाए ना तोड़ वीरवे। ते कामा उहदा हाथ

या उस लड़की का तेनू क्या फुल तोड़ मालिक का हुक्म कामे ने ते मनना है उस कामे ने फुल नू फिर हथ पाया बच्ची भी कोल पहुंच गई इधर कामे ने फुल तोड़िया उधर उस बच्ची ने आखरी वरी क्या हाय ना तोड़ कहती हुई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई। ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया उस अपने महल नू मुड़ पिया पिछे पिछे और नौकर हाथ विच फुल फड़े है ओ भी तुरदा जा रहे है पर उस नू इस तरह जापता है जिवें फुल विचों इको ही आवाज आ रही है हाय ना तो हाय ना तो। जसवंत राय महल विच जाके बैठा कामे ने ओ फुल सामने रखिया हाय ना तोड़ हाय ना तोड़ कहिंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया कहिंदा जा रहा मैं अपराध कीता फुल नहीं तोड़िया एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी नौकरी छड़ के भज गया। जसवंत राय हैरान हो गया पर उसके कन्ना विच भी इको ही आवाज गूंज रही है हाय ना तो हाय ना तो। उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच ताज देव सिख अपनी बच्ची नू मंजी ते पा के घर लै गए। सिदकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नू मंजी ते पाए है देव सिख इहदी घर वाली कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने। रात पै गई सारा दिन बीत गया पर बच्ची नू होश कोई नहीं। जसवंत राय धन पदार्थ बहुत है गुरु तू बेमुख है अमृत नहीं छकया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू ठीक भी नहीं समझता इन्हां ने हथियार चुके ने लड़ाइयां लड़दे ने इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं ते बेमुख होए है पर अज इस नू चैन नहीं आ रहा। रात पई जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया हे हिंदुस्तान हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने किसे भी जात दे किसे भी मजहब दे ये सारे लोग एक फुल्ला दी तरह ने कोई किसे रंग दा फुल कोई किसे रंग दा फुल फुल आसरे ने मैं करे ने खिड़खड़ा रहे ने। जसवंत राय सुपना देख रहे है हर फुल दे सराणे एक तुर्क पठान खड़ा है हर एक फुल दे सराणे एक एक तुर्क पठान खड़ा है। अचानक एक ऐसी हनेरी चली उन्हां तुर्का पठाना ने अपने पैरां थले इन्हां फुल्लां नूं लताड़ना शुरू कर दिता और हरेक फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही है हाय ना तोड़ हाय ना तोड़। फुल लहूलुहान हो रहे ने ए तुर्क पठान फुल्लां नूं मसल दे जा रहे ने। अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा एक गर्जवी आवाज आई खबरदार ठहर जाओ हुण कोई फुल्लां नूं हाथ ना पाणा। ए लिशक ने जो खबरदारी की थी वो फुल्लां नूं लताड़न वाले ठिठंबर गए कुछ मारे गए कुछ भज गए कुछ आप फुल्लां दी तरह निमाणे हो गए संभल गए सुधर गए। फिर आवाज आई रख लिया रख लिया। ए नजारा देख के
जसवंत राय दी अख खुल के सारा शरीर परसीने नाल भरे है। घरवाली नूं उठाया, जसवंत राय कहन लगा भलीए लोके मैं बड़ा बेचैन हां। इस तरह जापदा है जिवें महल दी